चाहिँदैन चाहिँदैन चाहिँदैन चाहिँदैन लु भइगयो बरु अन्त खोजौँला।